0: Sports now, and badminton star and shuttle and two-time Olympic medalist PV Sindhu scripted history becoming the first Indian to win the prestigious Japan Open. She clinched the women's singles title in Tokyo today, defeating local favorite and three-time world champion Akane Yamaguchi in straight games 21-17, 21-17. With the win, Sindhu ended a title drought of more than 2 years. Sindhu's previous title came at the Syed Modi International in 2024. The Indian shuttler entered the final after opponent and world number 4, Chen Yufei of China, retired with the second set of the match yesterday. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia congratulated PV Sindhu on the historic triumph. In a social media post, Dr. Mandavia said the entire nation is proud of her. Football fever has gripped fans across the globe as defending champions Argentina and European powerhouse Spain prepare for a thrilling showdown in the FIFA World Cup final at the New York, New Jersey Stadium tonight. The title clash is scheduled to kick off at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The two football giants will battle it out for the coveted trophy in a high-voltage clash that promises excitement, drama, and unforgettable moments. Both teams have produced impressive performances throughout the tournament and will now battle for football's biggest prize. Last night, England secured bronze medal after defeating France 6-4 in a thrilling third-place match at Miami Stadium. In cricket, the series deciding third ODI between India and England will be played today at Lord's in London. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. Indian Standard Time. The series is level 1-1. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government holds all-party meeting ahead of the monsoon session of Parliament. Opposition stages symbolic walkout of invitation to NCPI to the meeting. Parliamentary Affairs Mr. Kiran Rijiju seeks cooperation of all parties for smooth running of Parliament. Flash floods and landslides hit multiple places in Jammu and Kashmir, claiming several lives and damage to property. Rescue operations in full swing, sent assures of all possible assistance. President Draupadi Murmu embarks on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. In badminton, PV Sindhu scripts history, becoming first Indian to win Japan Open, clinches women's singles title defeating Japanese shuttler Akane Yamaguchi. And football fever peaks worldwide as Argentina and Spain gear up for a showdown in FIFA World Cup final tonight. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा मुख्य समाचार संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत संपत्ति को नुकसान पहुंचा बचाव कार्य जोरों पर केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से और अब समाचार विस्तार से संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे
2: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी डीएमके झारखंड मुक्ति मोर्चा तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में

0: शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मानसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मानसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रही। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मानसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टानें गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

0: लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिलिया नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की तीन दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली ओएमआर शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है आपके मनचाहे गीतों का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का इस प्रोग्राम में। जब विविध भारती है आपके संग, तो सुरीले गीतों की बहार तो लाजमी है श्रोताओ, और ऐसे में हो आपके पसंदीदा गीत तो क्या कहने। तो देखिए आज के मनचाहे गीत प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो शामिल नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

जीनी की राह फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से। इस गीत की फरमाइश की सिमगा से, छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले की ये फरमाइश थी। और इसी गीत को सुनना चाहा जारूर वाड़ूर महाराष्ट्र से बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, कार्तिक युवराज। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार ने।

पत्थर के सनम फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश भेजी बारगी नगर जबलपुर से रविंद्र, सुभाष, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि गढ़े ने। कुंडलेश्वर खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते थे योगेश गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। इसी गीत की फरमाइश की श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जॉनी, धनराज बंसीवाल, गुंजन और प्रियंका और केशव भी यहीं से। केवर कॉलोनी बाड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली की फरमाइश थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओ कार्यक्रम मन चाहे गीत।

फिल्म आंधी का दुगाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता की फरमाइश थी। कोटा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तुपानी डांगी, मिस टीना डांगी, लक्ष्य बाबू की ये फरमाइश थी। और लक्ष्मीपुरा देवास से नवीन वर्मा, विराट वर्मा, मीनू वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा। नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से इस गीत की फरमाइश करते हैं। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया की ये फरमाइश थी।

ठाकुर जनरल सिंह फिल्म में आशा भोसले को आपने सुना, असद भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला गणेश ने, और फरमाइश की आप सभी ने सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता प्रदीप जैन और इनके बहुत सारे साथी, और केदारनाथ सोसाइटी से, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करण राज और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते थे। तेलंगाना राजन्ना सिरिसिल्ला जिला विलासागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्वी, माहिती चंद्रया, मल्लवा, नरेश, लावण्या, महसिविन, रेवंत, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लोफर से मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गीत को सुनना चाहा फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन ने, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, जिला लुधियाना मोहल्लापुर दाखा मंडी से राजेश अरुणा, दीपक गौतम, बिट्टू बिट्टी, अरिहंत, सुरभि और नगीना की फरमाइश आई। गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी इस गीत को सुनना चाहती थी।

ये गीत आपने सुना फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर की आवाज़ थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत की फरमाइश की स्वामी देव बोधित सौ भवानी शंकर मिश्रा, गोवर्धन वर्मा, रवि मिश्रा और शंकर लाल पारिक ने, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। खत्री कॉलोनी नया अंसार कच्छ से अब्दुल कादर शरीन, अब्दुल अजीज अफियत, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपार, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, मन चाहे गीत प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है। रहिए विविध भारती के संग और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भेजते रहिए अपने पत्र चिट्ठियां, क्योंकि हमें रहता है आपकी फरमाइशों का इंतजार। दीजिए इजाजत आज के कार्यक्रम से, संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार।

0: नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का लिखा नाटक यात्रा का अंत।
1: आप कब तक खड़े रहेंगे बाबू? यहाँ बैठ जाइए ना।
2: बैठ कर क्या करूंगा भाई, यू ही ठीक हूँ।
1: कब से तो आप खड़े हैं, थक गए होंगे। मैं यहाँ जगह बनाई देता हूँ, बैठ जाइए।
2: मेरे लिए क्यों चिंता करते हो भाई, मैं ठीक हूँ।
1: आप कुछ चिंतित मालूम होते हैं।
2: चिंतित? चिंतित क्यों होऊंगा?
1: नहीं, आपको देखने से लगता है कि आप कुछ दुखी हैं।
2: मेरे सुख दुख से किसी को क्या मतलब?
1: आप यहाँ बैठ तो जाइए, दुनिया में आदमी है तो एक दूसरे की चिंता तो करनी चाहिए।
2: हाँ भाई, जरूर करनी चाहिए। तुम मेरी चिंता न करोगे तो कौन करेगा बेटे, कौन करेगा?
1: मैं लाचार हूँ पिताजी।
2: ये मेरी इज्जत का सवाल है राजेश बेटे, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
1: नरेश लाचार है तो मैं भी लाचार।
3: सोच रहे हैं क्या?
2: हाँ? नहीं भाई, सोचूंगा क्या, मेरे पास सोचने को है क्या?
1: घर परिवार में तो सब ठीक है ना?
2: हाँ, सब ठीक ही है।
4: क्या कह रहे हैं आप?
2: राजेश की माँ, जिस धरती पर मैं खड़ा था ना, वो धरती मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई है। मैं कैसे खड़ा रहूं यहाँ, जहाँ धरती तरक गई हो, दीवारें तरक गई हो, जिंदगी तरक गई हो, वहां राजेश की माँ मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा।
4: लेकिन आप क्या कह रहे हैं
1: पिताजी?
2: मुझे गलत नाम से न पुकारो।
1: से बैठिए ना।
2: मैं बहुत ठीक हूँ भाई, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी।
1: इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आदमी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो दूसरा करेगा कौन?
2: ठीक कह रहे हो तुम भाई,

0: आप जा कहाँ रहे हैं?
1: क्यों,
0: नहीं पूछना चाहिए क्या?
1: नहीं भाई, पूछने में क्या हर्ज है?
0: मैंने यही जानने के लिए पूछ दिया कि कहाँ तक आपका साथ रहेगा, कहाँ जा रहे हैं आप?
1: यही तो नहीं मालूम है मुझे।
0: क्या कह रहे हैं आप?
1: सच ही तो कह रहा हूँ भाई, जानता तो बतलाने में हर्ज ही क्या था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ।
2: अब क्या होगा राजेश?
0: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ।
2: सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा बेटे।
0: मैं अपनी ओर से कुछ उठा नहीं रख रहा हूँ माँ। मैं पिताजी की खोज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेडियो से सूचना प्रसारित करा दी है, अखबारों में सूचना निकलवा दी है, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी है और संबंधियों को भी लिख दिया है।
2: लेकिन ये सब करने से क्या होगा?
0: दूसरा और मैं क्या करूँ? तुम जो कहो मैं सब करने को तैयार हूँ।
2: मेरी समझ में कुछ आता है कि कहूँ? तुमने पहले कुछ नहीं सोचा।
0: मैं क्या जानता था कि ऐसा हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि पिताजी इस तरह एकाएक घर से चले जाएंगे।
2: सोचा तो मैंने भी नहीं था बेटे, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि वैसी स्थिति में वे कर क्या सकते थे। उन्होंने किस विश्वास के बल पर कृष्णा की शादी देखी थी, लेकिन उनका वो विश्वास ही टूट गया तो वे क्या करते?
0: मैं क्या कहूँ माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
2: तुम क्या कहोगे राजेश, अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पिताजी ने किस उम्मीद और अरमान से बेटों को पढ़ाया लिखाया, क्यों कि बुलाया? अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कमाया सब बेटों की पढ़ाई लिखाई पर लगा दिया। ये कभी नहीं सोचा कि अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए।
0: मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, सब कुछ जानता हूँ। यह सब कहने की जरूरत नहीं है।
2: इसी बात का दुख है बेटे कि तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, और तब भी तुम्हारे पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा।
0: मुझे भी इसी बात का दुख है माँ। मैंने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके तो नहीं रुके।
2: लेकिन तुमने उन्हें अकेले छोड़ कैसे दिया?
0: मैं क्या करता माँ, मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कितना कहा लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने समझा अभी आवेश में है, कुछ देर में इधर उधर से घूमकर खुद ही वापस चले आएंगे।
2: कई दिन तो हो गए, कहीं उनका पता नहीं है।
0: यही तो मालूम नहीं होता कि कहाँ चले गए। ये नरेश के यहाँ तो नहीं गए होंगे?
2: नरेश करम तो देख आए थे, उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं?
0: और कोई ऐसा रिश्तेदार और परिचित तो दिखाई नहीं पड़ता जहाँ वे जा सके?
2: जिसने अपने बेटे का घर छोड़ दिया है वो रिश्तेदार और परिचित कहाँ जाएगा?
0: फिर कहाँ गए होंगे?
2: इसी से तो मुझे चिंता हो रही है, कहीं वे कुछ ऐसा ऐसा न कर बैठे। मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी?
0: तुम चिंता न करो माँ, पिताजी का पता जरूर लगेगा, वे जरूर लौट कर आएंगे।
2: तुम उन्हें नहीं जानते बेटे, वे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, आन के सामने भी और कोई बात नहीं सोचते। जिद और आन के चलते ही उन्होंने इतना कष्ट सहकर तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने तुम लोगों के विश्वास पर कृष्णा की शादी तय की थी। शादी न होने पर समाज में उनकी कितनी बेइज्जती होती, क्या वे कहीं मुंह दिखाने लायक रहती?
0: गलती तो जरूर हुई है माँ।
2: अब कहने से क्या होता है राजेश, तुम्हारे पिताजी चले गए, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई।
0: ऐसा न कहो माँ।
2: कहने न कहने से क्या, सच तो सच ही रहेगा ना। वे थे तो मेरे लिए सब कुछ था, वे चले गए, मेरा सब कुछ चला गया। मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी?
0: ऐसा न कहो माँ, हम तो हैं।
2: कैसे विश्वास करूं मैं, जिसने पिता की त्याग तपस्या के मूल्य नहीं समझा वो मेरी चिंता करेगा।
0: माँ ये क्या कह रही हो तुम?
2: सच ही तो कह रही हूँ बेटे, जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अनुभव कर

0: रही हूँ, वही तो कह रही हूँ।
1: मुझे गलत न समझो माँ, मैंने इस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, नहीं तो ऐसा क्या मैं कभी होने देता। पिताजी जो कहते जैसा कहते वही करता मैं।
0: अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी लौट आए, सकुशल लौट आए।
1: अपनी ओर से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ।
0: कोशिश तो करनी ही है बेटे, मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मैं भी उनके साथ क्यों नहीं चली गई। मुझे क्या हो गया था उस समय कि मैं खड़ी देखती रही और वे मेरी आंखों के सामने से चली गए।
1: ये सब मत सोचो माँ, मत सोचो, जो होना होता है वही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
0: जानती हूँ मैं, लेकिन इससे मेरे मन को संतोष नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। मैं कह देती हूँ राजेश, अगर वे लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी।
1: ये क्या कहती हो माँ?
0: मैं सच कहती हूँ बेटे, अगर तुम्हारे पिताजी लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी।
1: माँ ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो माँ।
0: तुम्हें बताओ दूसरा मैं क्या कहूँ?
1: हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है माँ, उन्हें खोजने में मैं कुछ नहीं उठाने रखूंगा। मैं उमेश को इस काम के लिए शहर भेज रहा हूँ और मैं खुद भी घूम फिर कर उनका पता लगाऊंगा।
0: आशा तो तुमसे यही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मन में तरह तरह की आशंकाएं आती रहती है।
1: मन को धीरज बंधाओ माँ, धीरज बंधाओ, मुझ पर विश्वास रखो। क्या है कृष्णा?
0: तुम यहाँ कब से खड़ी हो बेटी?
2: अभी आई हूँ माँ।
0: क्या बात है बेटी?
2: माँ खाना तैयार हो गया है।
0: मुझे तो भूख नहीं है।
2: क्यों माँ, सवेरे भी तुमने नहीं खाया था।
0: भूख होगी तो खा लूंगी।
1: पर इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे होगा माँ?
2: तुमने भी तो सवेरे नहीं खाया था भैया।
0: तुम भी खाना पीना ना छोड़ो राजेश।
1: मैंने नाश्ता किया था माँ, भूख नहीं मालूम हुई।
2: एक बात कहो माँ।
0: कहो ना, क्या बात है बेटे?
2: माँ मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन लेकिन मेरा मन अब बिल्कुल भर आया है माँ।
0: क्या बात है बेटी, कहो भी तो।
2: मैं तुम्हारी बातें अभी सुन रही थी माँ, तुम कहती हो कि पिताजी वापस नहीं आए तो तुम भी ये घर छोड़कर चली जाओगी, क्यों माँ?
0: यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी बेटी?
2: लेकिन मेरा क्या होगा माँ, मेरा क्या होगा माँ, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी माँ?
1: ये सब क्या कह रही हो तुम, बेकार की बातें नहीं सोची जाती कृष्णा।
2: ये बेकार की बातें नहीं है भैया, जिंदगी की असलियत है। मेरे मन में शुरू से ही बेचैनी रही है और पिताजी के जाने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई है भैया। बार बार मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में सिर्फ मैं ही हूँ।
0: ये सब नहीं कहते बेटी, ये सब नहीं कहते।
2: क्या करूँ माँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मुझसे अब रहा नहीं जाता माँ। अपने ही कारण इस घर को बर्बाद और परेशान होते देख मैं सचमुच बहुत बेचैन हूँ माँ। सब कुछ मेरी शादी के कारण ही तो हुआ है, इसी के लिए तो पिताजी इतने परेशान रहे, इसी के लिए तो घर के अपने लोगों में संघर्ष और तनाव बढ़ा, और इसी के कारण तो पिताजी को घर से चला जाना पड़ा। सबकी परेशानी की जड़ तो मैं ही हूँ माँ, काश कि मैं नहीं रहती माँ।
0: ये सब क्या कहती है बेटी, ये सब मत कहा, मत कहा। जिंदगी है तो ये सब देखना और भोगना ही पड़ता है।
2: लेकिन तुम भी चली जाओगी माँ, तो मैं कैसे रहूंगी माँ?
0: मैं अभी जा कहा रही हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं जा सकती हूँ भला? बिना तुम्हारा इंतजाम हुए मेरे मन को कहीं शांति मिलेगी? लेकिन मैं क्या कहूँ, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत दुखी हूँ।
1: हम सब दुखी हैं माँ, लेकिन सिर्फ दुखी होने से तो काम नहीं चलने वाला है ना। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे, जी जान लगा।

0: आकर करेंगे, जहां और कुछ सोचने का समय नहीं है। अभी तो उन्हें कहीं से खोजकर घर ले आना है।
1: हे भगवान, कहां होंगे वो, कैसे होंगे, उनकी रक्षा करना भगवान।
0: ये एकाएक क्या हो गया भैया? तुम सब कुछ जानते हो नरेश, मैं तो उस दिन रेडियो से सुनकर एकाएक सन्न रह गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, कभी आपका तार मिला।
2: हाँ, मैंने सोचा शायद तुम्हारे यहाँ गए हो।
0: नहीं, मेरे यहाँ नहीं गए, मैंने तार का जवाब दे दिया था।
2: हाँ, मिल गया।
0: लेकिन लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? क्या कहकर गए थे? कैसे गए यहाँ से?
2: तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, और तुम मुझसे पूछते हो ये हुआ कैसे?
0: मेरे कारण हुआ? मेरे कारण वे घर छोड़कर चले गए?
2: दूसरा क्या?
0: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भैया।
2: तुम सब समझते हो नरेश।
0: मैं कुछ नहीं समझता भैया।
2: तुम इतने सरल होते तो आज ऐसी बात ही नहीं होती।
0: मुझ पर कोई

0: आखिर ये हुआ कैसे? क्या कहकर गए थे? कैसे गए यहाँ से?
1: तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, और तुम मुझसे पूछते हो ये हुआ कैसे?
0: मेरे कारण हुआ? मेरे कारण वे घर छोड़कर चले गए?
1: दूसरा क्या?
0: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भैया।
1: तुम सब समझते हो नरेश।
0: मैं कुछ नहीं समझता भैया।
1: तुम इतने सरल होते तो आज ऐसी बात ही नहीं होती।
0: मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम मालूम होता है।
1: नहीं नरेश, इल्जाम लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? मुझे तो सिर्फ दुख है इस बात का कि जिस पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना किया, उन्हें हम लोगों के कारण घर छोड़ना पड़ा।
0: कुछ बात भी तो बतलाइए भैया।
1: कृष्णा की शादी के सिलसिले में पिताजी तुम्हारे पास गए थे?
0: गए तो थे।
1: तुमसे कुछ बातें हुई थी?
0: हुई थी।
1: तुमने क्या कहा था?
0: मैंने कहा था कि मैंने मकान में काम लगा दिया है, पैसों की कमी हो गई है, इसलिए मैंने अपनी लाचारी जाहिर की।
1: उसी लाचारी ने तो यह अनिष्ट कराया है नरेश।
0: आपके यहाँ क्या बातें हुई?
1: मैंने उनसे कहा था कि 40,000 रुपए बहुत होते हैं, अकेले मैं उतने रुपए नहीं दे सकूंगा, आधा नरेश दे दे तो आधा मैं दे दूंगा।
0: उन्होंने क्या कहा?
1: उन्होंने जो शादी तय की थी उसे तोड़ने को वो तैयार नहीं थे, और उसमें 40,000 से कम लगते नहीं। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं 20,000 रुपए देने को अभी भी तैयार हूँ, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। और तुमने तो कुछ भी देने से साफ ही इनकार कर दिया।
0: मैं क्या कर सकता था भैया, मेरे रुपये मकान में लग गए हैं और मकान अभी अधूरा है।
1: अरे मकान कुछ दिन और अधूरा रह जाने से तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम चाहते तो पिताजी को आसानी से 15-20 हजार तो दे ही सकते थे। पिताजी की इच्छा पूरी हो जाती, कृष्णा की शादी भी हो जाती, और आज जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई है इसका सामना तो नहीं करना पड़ता।
0: आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाचारी की बात क्या कहूँ?
1: कोई भी कह सकता है कि तुम्हारी लाचारी एक बहाना है। उनका सहज विश्वासी मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा कि वे एकाएक टूट गए।
0: मैं उनकी स्थिति समझता हूँ भैया, लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता था?
1: सब तो तुम ही कर सकते थे नरेश। तुमने रुपए दे दिए होते तो पिताजी को इस तरह घर तो नहीं छोड़ना पड़ता।
0: जब ऐसी बात थी तो आपने ही पूरे रुपये क्यों नहीं दे दिए? आपके पास रुपये नहीं थे क्या?
1: मुझे पहले शादी की बात का पता नहीं था, और मैंने कुछ रुपए खास काम में लगा दिए थे।
0: जानता हूँ मैं वो खास काम, जमीन बाहर में भी खरीदी जा सकती थी।
1: मुझे शादी का पता रहता तो मैं कभी अपने रुपए जमीन में नहीं लगाता।
0: ये सब कहने की बातें हैं भैया।
1: तुम जो कहो नरेश, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं बहस में पड़ने की स्थिति में हूं भी नहीं। अभी मेरे सामने दूसरी समस्या है।
0: समस्या? क्या समस्या है?
1: पिताजी के चले जाने से तुम्हें दुख नहीं होता क्या?
0: होता क्यों नहीं भैया, लेकिन अब करना क्या है?
1: पहले तो पिताजी की खोज करनी है, उन्हें वापस ले आना है। माँ कहती है कि पिताजी नहीं आए तो वो भी कहीं चली जाएगी। कृष्णा कहती है कि माँ यहाँ नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगी।
0: समस्या तो कठिन है ही।
1: खोज के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं कर रहा हूँ। ईश्वर करे वे वापस आ जाए, कहीं कुछ हुआ तो बड़ी बदनामी होगी।
0: बदनामी तो होगी ही, लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
1: ये तो है ही, अपना कर्तव्य भी तो है।
0: आप जो कुछ उचित समझे करें, मैं आपके साथ हूँ।
1: पिताजी आए या ना आए, असली समस्या तो अपनी जगह पर है, और उसे हम ही लोगों को सुलझाना है।
0: आप कृष्णा की शादी की बात कर रहे हैं?
1: हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। अब तो वो हम ही लोगों की जिम्मेवारी है ना। अब हम लोग उसे किसी दूसरे पर तो नहीं फेंक सकते। जैसे भी हो हम ही लोगों को निभाना है।
0: हाँ, उसे भी देखा जाएगा भैया।
1: तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए।
0: मुझसे जो हो सकेगा जरूर करूंगा। पहले पिताजी के बारे में कुछ पता तो लगे।
2: क्यों बेटे, कुछ पता लगा?
1: नहीं माँ, कुछ भी नहीं मालूम हुआ।
2: कितने दिन तो हो गए।
1: हाँ माँ, इसीलिए अब मुझे भी चिंता होने लगी है। मैंने अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहां जहां सूचनाएं ले सकता था सब जगह मैंने दे दी है। उमेश को भी मैंने इधर उधर घूमकर पता लगाने के लिए भेजा, खुद भी बाहर गया, पर कहीं कोई पता नहीं मिला।
2: ये सब तो मैं देख रही हूँ।
1: अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
2: मेरी भी आशा अब शेष हो गई है, अब क्या होगा?
1: जो ईश्वर की इच्छा होगी। ईश्वर की ही इच्छा है तो किया क्या जा सकता है।
2: क्या सोच रहे हो तुम?

0: क्या सोचूंगा?
1: मैं कहीं जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं भी अब बहुत दिनों तक जीऊंगी नहीं।
0: ऐसा ना कहो माँ।
1: अब मैं क्या करूंगी बेटे? अब जिंदगी में मेरे लिए रह क्या गया है? अब मुझे चिंता है तो सिर्फ कृष्णा की।
0: उसके लिए चिंता ना करो माँ, उसके लिए हम लोग हैं।
1: किसी तरह उसकी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो पाती, मरती भी तो शांति से मरती।
0: यह सब मत कहो माँ, कृष्णा की शादी होगी और अच्छी जगह अच्छी तरह होगी।
1: लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी बेटे। जो इच्छा उनके मन में थी, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ दिया, वो तो पूरी नहीं होगी।
0: होगी क्यों नहीं माँ? कृष्णा की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर है, हम लोग उसे सुखी देखना चाहते हैं।
1: मैं तो चाहूंगी कि जो शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी वही हो।
0: तुम जो कहोगी वही होगा माँ।
1: इतना आसान है बेटे?
0: है कि नहीं?
1: इतने रुपए लगेंगे?
0: हम लोग खर्च करने को तैयार है माँ।
1: फिर तो वही समस्या आएगी कि आधा नरेश दे आधा तुम दोगे।
0: मैंने नरेश से बातें की है।
1: क्या कहता है वो?
0: कहता है जितना उससे हो सकेगा जरूर देगा।
1: और उससे कुछ ना हो सका तब?
0: नहीं माँ, इस बार वह ऐसा नहीं करेगा।
1: मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। नरेश क्या कहता है क्या करेगा नहीं कहा जा सकता। पिछली बार उसने ठीक मौके पर इनकार कर दिया था।
0: पर इस बार ऐसा नहीं होगा माँ, वह कुछ नहीं देगा तभी शादी होगी।
1: कौन करेगा इतना खर्च?
0: क्यों, मैं करूँगा?
1: सचमुच?
0: एक बार मुझसे एक गलती हो गई है माँ, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता।
1: तुमने अच्छी तरह सोच लिया है?
0: हाँ सोच ही लिया है।
1: और बहू से पूछा है तुमने?
0: पूछना क्या है माँ, मैं जो कहूँगा उसमें उसे इतराज नहीं होना चाहिए।
1: चाहिए तो नहीं, लेकिन उसकी राय जरूरी है बेटे, वो भी तो इस घर में है।
0: ठीक है, कहती हो तो पूछ लूंगा।
1: अपने पिताजी के बारे में भी पता लगाते रहना।
0: हाँ माँ, मैं निश्चिंत नहीं बैठा हूँ। तुम क्या सोच रही हो कमला?
1: सोचना क्या है?
0: पिताजी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उनकी इच्छा किसी तरह पूरी होनी चाहिए।
1: कैसी इच्छा?
0: कृष्णा की शादी की।
1: हाँ शादी तो करनी ही है।
0: माँ कहती है कि जो शादी पिताजी ने तय की थी वही होनी चाहिए।
1: उसमें तो बहुत रुपया लगेंगे।
0: हाँ रुपए तो लगेंगे ही।
1: आएंगे कहाँ से?
0: उपाय करना पड़ेगा।
1: क्या उपाय करेंगे आप?
0: अरे उपाय क्या, शहर के लोग करने आएंगे, हम ही लोगों को तो करना है ना।
1: वही तो पूछ रही हूँ मैं।
0: उपाय सीधा है, हम लोगों को ही सारे रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
1: क्या सब रुपए आप खर्च करेंगे?
0: तो दूसरा कौन करेगा?
1: और नरेश?
0: फिर तुमने वही पुराना सवाल उठाया।
1: सवाल तो उठाना ही पड़ता है, जब दोनों भाई कमाने वाले हैं, समर्थ है, तो बहन की जिम्मेवारी दोनों पर है।
0: और उनमें से कोई एक अपनी जिम्मेवारी ना समझे तब?
1: समझेगा क्यों नहीं, उसे समझाना पड़ेगा।
0: और यदि वो समझने से इनकार कर दे तब?
1: तब परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। नरेश आधा देता है तो ठीक है, हमें आधा देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल हाथ खींच लेता है तब तो हमें सोचना पड़ेगा।
0: और क्या सोचना पड़ेगा?
1: हमें ही जब शादी तय करनी है तब हम अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे, कहीं ऐसी जगह करेंगे जहाँ कम पैसे लगे।
0: ओफो, यह संभव नहीं है कमला, पैसे कहीं कम नहीं लगेंगे। पिताजी ने कुछ सोच समझ कर ही शादी तय की थी, वे कृष्णा की शादी अच्छे लड़के से करना चाहते थे। हम उनकी इच्छा नहीं पूरी कर सके तो वे घर छोड़कर चले गए। अब हमें कम से कम माँ की इच्छा का तो ख्याल करना है।
1: ख्याल करने का ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल ना करें? अपनी तीन बच्चियां हैं, अपना मुन्ना है, इनके भविष्य को भी तो देखना है।
2: भैया भैया भैया, क्या हो गया भैया?
0: क्या
2: हो गया?
0: क्या हुआ क्या नरेश?
2: चक्कर दिखे थे भैया, कृष्णा ने आत्महत्या कर ली है भैया, पंखे से छोड़ गई है।
0: मैंने कभी सोचा भी ना था कि ऐसा होगा। तुमने चिट्ठी देखी है नरेश? कृष्णा ने लिखा है।
3: मेरी प्यारी माँ, जब तुम मेरा निर्जीव शरीर हवा में झूलता देखोगी

0: तुम्हारी जो हालत होगी उसे सोचकर मैं कांप उठती हूँ माँ, लेकिन मेरे लिए अब रास्ता ही क्या है। रोज रोज हर मिनट हर घड़ी मरने से तो एक ही बार मर जाना ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे बार बार कहती रही हूँ माँ कि मैं इन परिस्थितियों से ऊब गई हूँ माँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। सिर्फ मेरे कारण पूरा घर परेशान है। मेरे कारण पिताजी घर से चले गए। मेरे ही कारण तुम हमेशा चिंतित रहती हो। मेरे ही कारण माँ मेरे भाइयों में इतना तनाव है। मैं नहीं रहूंगी तो चारों ओर शांति हो जाएगी। माँ मैं जानती हूँ मौत किसी समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता माँ। देखो मैं दहेज के लिए रुपए नहीं कमा सकती। मैं दहेज मांगने वालों से ये नहीं कह सकती कि रुपए मत मांगो। मैं अपने भाइयों पर दबाव नहीं डाल सकती माँ कि वे मेरे लिए त्याग करें। मेरे मन में ये बात बार बार आती है माँ कि मैं लड़की क्यों हुई माँ, क्यों लड़की हुई। लड़का हुई रहती तो पूरे परिवार के लिए समस्या तो नहीं बनती। मेरी माँ तुम्हें दुख तो जरूर होगा माँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ। अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती माँ, अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती।
1: आप ही से तो पिछले बार भेंट हुई थी।
2: हाँ भाई, इसी ट्रेन में।
1: ठीक तो है?
2: ठीक ही हूँ।
1: कहाँ जा रहे हैं?
2: मैंने कहा था ना, मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। कई जगह उतरा लेकिन कहीं रुक नहीं सका। भाई मैं नहीं जानता मेरी यात्रा का कहाँ अंत होगा।
1: आपके अंदर जरूर कोई बेचैनी है।
2: ये अखबार आज का है?
1: हाँ आज ही का है। लीजिए देखिए।
2: ये पत्र राजेश ने छपाया है क्या?
1: राजेश कौन?
2: कोई नहीं, किसी राजेश ने ये पत्र छपाया है, वही देख रहा हूँ।
3: जी पिताजी, पता नहीं आप कहाँ हैं। अगर आप यह पत्र देखें तो जहां भी हो लौट आइए। हमें माफ कर दीजिए, पूरा घर दुख में डूबा हुआ है। कृष्णा नहीं रही, माँ मरना सुने है।
2: माँ मरना सुने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
1: क्या बात है भाई साहब?
2: मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता। कृष्णा नहीं रही, क्या मतलब है इसका? कहाँ नहीं रही दुनिया में? नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
1: ये आपके घर की चिट्ठी है। लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
2: लौट कर क्या करूंगा, क्या करूंगा लौट कर?
1: आपकी पत्नी बीमार है।
2: हाँ, मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई? मर गई? कैसे मर गई? नहीं ऐसा नहीं हो सकता।

0: नहीं हो सकता। मैं घर छोड़कर भाग सकता हूँ तो क्या वो दुनिया नहीं छोड़ सकती? क्या उसने आत्महत्या कर ली? उसने आत्महत्या नहीं की है, मैंने उसकी हत्या की है।
1: तो ये था नाटक यात्रा का अंत। इसके लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, निर्देशन किया एम एस बेक ने। आकाशवाणी के रांची केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती,
3: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी फिल्म की कथा जब पर्दे से बाहर दर्शकों के दिलों को स्पर्श करती है तो वो फिल्म अपने किरदारों, गीतों और कथानक के जरिए बन जाती है सदाबहार। इसी तरह अपनी फिल्मों से दर्शकों की सोच को नई दिशा देने वाली निर्देशिका और पटकथा लेखिका हैं सई परांजपे, जिन्होंने पुरुषों के आधिपत्य वाले इस क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी उपस्थिति भी खूब दर्ज कराई। सई परांजपे हिंदी सिनेमा की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन की बागडोर संभालकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आम जीवन की कहानी को भावपूर्ण तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली सई परांजपे समानांतर सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। वो अपनी यादों का पिटारा खोलने वाली हैं हम सभी के सामने। उनकी फिल्मों के पीछे की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत का पहला भाग।
1: सई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में आके?
2: बताऊं कैसे
1: पुराना लग रहा नाता है।
2: हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मैके पहुंच गई।
1: क्या बात है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी यादें उमड़ के आ रही हैं। और रेडियो ये मेरा पहला कार्य था और मेरा पहला प्यार कहिए, ऐसे लगता है कि दोबारा मैं वो सब अनुभव झेल रही हूँ।
1: मैं देख रहा था कि जब आपने हमारा लाइव स्टूडियो देखा तो आपकी आंखों में एक चमक थी और एक नमी थी। काफी पुराने दिन आपको याद आ गए।
2: जी, सही बात है।
1: जी, रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे। हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र में आपकी पहली किताब आ गई थी। मतलब लिखना जो है वो बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है।
2: जी बिल्कुल, मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी। और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी, रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुना मुझे, सुनाऊंगी। तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ। और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था। लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी, वाह ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई, मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से कि नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने कहा क्या क्या कह रही हो, तुमने रचाई, बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैं नहीं रचाई। कहती और कोई कहानियां? मैंने कहा बतेरी है, बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है। तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ, तब तक खेलने नहीं जाना, 3 पन्ने लिखो।

0: कहानियां बड़ी कहानीकार बन गई तुम तो लिखो तीन पन्ने कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ
1: तो मजा था कि सजा थी
0: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे हाँ मजा जरा भी नहीं लगता था पहले तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई लेकिन बाद में खैर तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई मराठी किताब थी उसका नाम था मुलांसा मेवा मतलब बच्चों के लिए किशमिश कहो
1: सुंदर नाम
0: लेकिन मुझे लगता है उसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है क्या कहते हैं बड़ी बात क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में जिनको मेरी माँ जैसी माँ नहीं मिली
1: जी जी हाँ
0: मेरी माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना मुझे इनकरेज करना और मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है लेकिन चलो मेरी ये किस्मत थी कि मेरा एक सीवे में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में किताब छपी
1: लेकिन एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का शकुंतला परांजपे राज्यसभा की सदस्य रही परिवार नियोजन महिला शिक्षा को लेकर जो काम उन्होंने किया है फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया
0: करेक्ट
1: ये भी जो इन दोनों की जो छत्र छाया है दो महान हस्तियां
0: जी
1: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको
0: इसमें कोई शक नहीं और बिल्कुल मैं कहती हूँ जहे नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया जरा भी नहीं मतलब शुरू में बहुत चाहते थे सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में लेकिन मेरा तो क्या कहें कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ लेकिन नाना ने हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे नाना को बहुत शौक था वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी तो सुबह हम निकलते मैं उनके साथ और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे कोई वो कहानियां सुनाने का जमाना था मेरे बचपन में मैंने तो बहुत कहानियां सुनी तो वो ग्रिम्स या एंडरसन ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का बाल वांग में लिखने वाले तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज सही को क्या सुनाया जाए उसका तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें प्यार जतलाया जिंदा किया मेरे अंदर मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी और माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी उसने भी कैम्ब्रिज में जब लड़कियां मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुंच जाती थी उस जमाने में माँ ने ना तो मैट्रिक सिर्फ किया लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की और फिर सोचा वो थी तो अपना ही करने वाली थी वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके वो स्विट्जरलैंड पहुंची फिर उन्होंने वहां फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह फिर एक बहुत बहुत हैंडसम रशियन पेंटर चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ दोनों ने शादी की 2 साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी
1: और पुणे
0: हाँ पुणे आ गई और नाना के पास मतलब अपने पिता के पास मेरे नाना अप्पा हम कहते थे और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी
1: बिल्कुल रघुनाथ
0: पुरुषोत्तम
1: परांजपे जी एक बहुत बड़ी हस्ती एक राजदूत एक शिक्षाविद फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल फिर पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर
0: जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी और इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है
1: क्या बात हाँ, है तो हाँ. वो जो आपके बोलने की नजाकत है वो लखनऊ से आती है
0: ओ डियर चलो मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ बहुत ही बड़ा
1: नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए वो तो अभिनेत्री भी थी
0: अभिनेत्री मत कहो क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया दुनिया न माने या मराठी में कुंकू हाँ उसमें अच्छा रोल था चित्रा का जो कि शांता अपटे हीरोइन थी फिल्म की उनकी वो सौतेली माँ लेकिन हम उम्र मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी उसके बाप से उसकी शादी होती है लेकिन कोई खास रोल बना नहीं अच्छा नहीं किया मैंने कहा भी बाको कि ये क्या तू कहते इसीलिए

0: देखी थी फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं गई लेकिन यूनुस एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया लिखा भी लेखिका तो थी नाटक लिखा पांघर लेली कातड़ी मतलब तहना हुआ खाल हाँ तो उसमें एक किरदार है कोइंड मछुआरी का हाँ तुलसा नाम की हाँ बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी माने सोचा लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डिकंजम खाना पूना में बैठ के वो तो आसान नहीं था फिर उन्होंने क्या किया हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी हाँ इस रिहर्सल के लिए रोज रोज मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना बम्बई से सीधा माहिम कोड़ीवाड़ा हाँ मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बस्ता है वो और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोड़ी टाइप का साड़ी पहनती गहने पहनती बालों में फूल रचा लेती और फिर उनका शुरू हो जाता था निरीक्षण कि वो सब औरतों को देखना वो कैसे बैठती हैं कैसे बोलती हैं कैसे चलती हैं कैसे अंदाज है उनके वगैरह वगैरह और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई और मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा ही रहा वो कभी खत्म नहीं हुआ और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे खेले डायरेक्ट किया वो एक प्यार बना रहा लेकिन वो और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची तो हमने स्टैंसलर्स्की पढ़ा और स्टैंसलर्स्की का कहना है आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो
1: जी,
0: है ना
1: बिल्कुल
0: तो वो तो पार्ट मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था
1: सही, हाँ?
0: कि
1: सही।
0: रोल कैसे जीते हैं वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया तो ये सब ऐसी बातें थी और वाकई में बहुत ही हट के बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी
1: कमाल की बात है कि हाँ, बड़ी शरारती थी
0: नहीं शरारती नहीं थी इतनी मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी शरारती लेकिन मेरी माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और कोई वजह हो कभी ना भी हो ज्यादातर ना भी होती थी फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी और हमारे गली में हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की और कुछ उल्टा सीधा काम करे तो उसको उसके माँ बाप कहते थे तुम सही की तरह पिटाई करने और मुझे इतना अपमान लगता था आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड तो ये बहुत था इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है माँ पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड़ कि जब मैं छोटी थी ना तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना
1: वाह वाह हाँ, बड़ा प्यारा
0: तो
1: था
0: हाँ बहुत स्वीट तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी और प्यारी गुड़िया तो फिर गुड़िया की शादी होती थी और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी मेरी भी गुड़िया थी लेकिन माँ कहती थी नहीं ये सब बकवास है गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं तो मैं कहती थी नहीं लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ मुझे भी तो बुलाना चाहिए मैं भी बुलाना चाहती हूँ तुम्हारे नहीं नहीं कोई शादी वादी नहीं चुप करवाती थी मुझे लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही मैंने जिद की और बहुत ही हट गई मैंने कहा नहीं मैं शादी तो ये होके ही रहेगी तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है चलो फिर मुहूर्त देखते हैं और बाकायदा मुहूर्त देखा और फिर तुलसी बाग करके पूना में एक बहुत फेमस मार्केट है तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे हाँ दोनों और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले और छोटा सा जूड़ा था और साड़ी पहनी थी मुझे अच्छी तरह याद है हरी रंग की साड़ी थी तो उनकी शादी हमारे घर हुई बकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे मतलब तुलसी बाग से ये छोटे छोटे मणि उसको क्या बोलते हैं पर्ल्स लाते थे उनकी मालाएं बनाना उनके कान के गहने बनाना ये बनाना वो बनाना क्या क्या क्या क्या चलता था और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की
1: अरे वाह,
0: सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी। फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम लिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से

0: होते हुए फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई और कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुना में कि सही के गुड़िया की शादी
1: गजब गजब ये तो इतनी भव्यता के साथ शादी की गई
0: जी और मेरी अपनी शादी में मां नहीं आई
1: हाँ ये भी एक विडंबना की बात लेकिन है ये वाला जिक्र आगे की तरफ करेंगे ये सूत्र पकड़ेंगे आगे लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहाँ पर आया है तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं
0: अरे क्यों नहीं
1: फिल्म में जो बात आती है गुड़िया कब तक रूठी रहोगी मुझे लगता है उसी जज्बात को वो
0: क्या बात
1: तो वो सुनाइए आगे बढ़ा बात

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स डिकेंस और सब बड़े साहित्यकारों को पढ़ रखा था,
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टिन, स्कॉट, और ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी, नाना के साथ पढ़ती थी और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स,
1: वुदरिंग हाइट्स, यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, तो ये सब पढ़ती थी और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है, भारा भागवत और दुनिया भर के साने गुरुजी और इतनी सारी किताबें, हाँ, और लक्ष्मीबाई टिड़क की भी जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा, तो ये मैं बहुत पढ़ती थी और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से जो कुछ बचकाना पन कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना

0: भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो चार साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहाँ फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहाँ जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा उसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहाँ बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म्स होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं और क्या क्या क्या नहीं होता, तो वो सब मैं इतना मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
1: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की एक तरह से नाटकों के संस्कार पड़ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ और वो है अच्युत रानाडे साहब।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात, वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी, बहुत ही उम्दा हस्ती थे। हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इब्सन का डॉल्स हाउस आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भड़ैनी देने आए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत थी फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे
1: जी।
0: पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
1: जीवन शैली का,
0: जीवन शैली का बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहां एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुंचते थे। और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां।
1: बड़ा मजेदार है।
0: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या द गुड अर्थ या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैसलाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई, और मराठी कहानियों की फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बाणूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस की हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं और बैल के सींगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है। मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे कहानी, और वो जैसे कहानी सुलझती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता। और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ फिल्म टेक्निक, सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था।
1: हाँ,
0: तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता दूं, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई। राम जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे,
1: शायर,
0: गाने
1: जी,
0: वाले। तो उनको पीने की आदत थी, और पीने से जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनकी बुरी तरह, वो दूसरी जो हौसा वाडकर की भूमिका थी वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है, तो वो कहते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी। और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा, फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं, और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुराई की नोक अटकती है। सुराई की नोक ही कहते हैं ना, तो सुराई की नोक अटकती है और वो सुराई साथ साथ उनके वो जा रही है, और ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा, अच्युत मामा इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना। तो उसने कहा, बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा, और सच बात कहूं थोड़ा घमंडीपन लगेगा, लेकिन सच बात कहूं तो मुझे लगा जो

0: मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था, ये दरअसल पर्दे पे जो आया है इतना मजा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ।
1: वाह,
0: ऐसा मुझे लगता है।
1: गजब गजब गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अचित मामा हैं, वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार
0: जी है। देखो वो साथ साथ होता रहा है,
1: कह के सुनाते हैं। हाँ। दूसरी तरफ नाटक चल रहा है।
0: हाँ।
1: माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा बनाती है। लेकिन दो बातें जो है वो मुझे बड़ी जरूरी लग रही है पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली ये कहा जा सकता है क्योंकि माँ भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी, वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है, क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है?
0: वो इत्तेफाक की बात है
1: जी।
0: हाँ, अब मैथ्स में नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते। लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था। हाँ, और आखिरी महीने जैसा होता है मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया, सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया। सही परांच पे कौन? मैंने कहा जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था। अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी, ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि ये किसने मुझे क्यों भेजा, ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो माँ ने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन? मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे। कहते हैं मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता, लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ देख तो लो क्या है, जा। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला के डेकंजम खाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले, उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार और फिर ये आपको पढ़ना है वहां। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट्स, ढगांचा गड़गड़ाटा सह विजांचा कड़कड़ाट हुई। हाँ, अब मुझे माँ का एक और ये बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे
1: जी।
0: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट, और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था क्योंकि शुद्ध भाषा, और वो इतना खजाना है संस्कृत में, तो माँ ने कहा ये तो बहुत जरूरी, और श्लोक आज भी मुझे 100-1 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और स्तोत्र भी अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी, रावण स्तोत्र, जटा कटाह संभ्रम ब्रह्म, पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान से गड़गड़ाट और विजान से कड़कड़ाट से क्या डरूं, है ना, तो वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया, सब चौंक गए कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने वे भारी
1: होते हैं,
0: वो ही करके मैंने खोला दरवाजा, दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओहो, तो आप ऑडिशन के, तो मैंने कहा ऐसे आई देखने क्या होता है वगैरह, ओहो मायूस हुए सब लोग तो नहीं? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया है? मैंने कहा नहीं, अब क्या है? कहते नहीं नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, लाइए। तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा, तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर

0: कल से आ जाइए और फिर कल से मैं जाने लगी
1: जी
0: और तब वो मुझे तनख्वाह अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया जैसे तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपए
1: वाह वाह
0: और मैं बड़ी खुश कि वाह वाह ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया इतना इतनी मजे की बात इतना मजे का चांस इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपए बहुत खुश हुई और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी
1: कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने
0: नहीं नहीं ऐसा कहते दिस इज द ऑल इंडिया रेडियो पुणे एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह ऐसा कुछ
1: अच्छा, अच्छा,
0: दिन का जो भी छोटा मोटा तो 5 मिनट के अनाउंसमेंट थी 5 या 10 मिनट के ऐसे दैट्स इट और हाँ और फिर एग्जाम हो गया एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो मैंने कहा हाँ अब तो दे सकती हो तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई
1: तीन गुना
0: फिर भी 150 मतलब क्या है कुछ भी नहीं एनीवे तो उसी में भी मैं खुश थी तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ तो एक दो दिन अच्छा लगा लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है तो फिर बालोद्यान में करने लगी बच्चों का कार्यक्रम उसमें कॉम्पेयर बनी दीदी नाम से हाँ तो वो तो बात बनी फिर दैट वाज ग्रेट फन आई एंजॉयड दैट
1: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया
0: नहीं ट्रंक कॉल नहीं वो हाँ। बताती हूँ किस्सा ताई ताई कहते थे मराठी ताई मतलब दीदी
1: जी
0: तो तीन जने हम कंपेयरिंग करते थे एक नाना जो बुजुर्ग थे जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर और मैं उनकी असिस्टेंट मैं दीदी और एक नेमिनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी हंसी मजाक एक दूसरे की खिंचाई बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह कार्यक्रम बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था टेलीफोन नंबर उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था तो मैंने फोन किया 199 को और मैंने कहा हेलो मुझे गदी माडगुल करके घर का फोन दे सकती हैं
1: वा, वा, वा।
0: तो लम्हे सन्नाटा फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं मैंने कहा हेलो तो उसने कहा ताई ताई बोल रही है टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से मैं चौंक के मैंने कहा वा, वा, वा, वा, मेरा हो गया मैंने कहा हाँ हाँ हाँ रेडियो की ताई बालोद्यान की ताई बोलते ना
1: मैं
0: हाँ हाँ जी हाँ मैं बोल रही हूँ अरे ताई एंड देन फॉर 5 मिनट्स 5 मिनट तक वो रुके ना वो
1: बेचारी
0: इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है कितना उसको अच्छा लगता है कितनी वो ताई से प्यार करती है ना ये वगैरह वगैरह वगैरह तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना आप तो उसने नंबर भी दिया फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम माय टेस्ट ऑफ रिकॉग्निशन जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
1: आवाज से वाह
0: और ये पहला अनुभव था और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद है फला नाटक ये पढ़ा वो वगैरह वगैरह लेकिन वो बात फिर कभी नहीं जो आनंद वो पहले उसमें था ना इताई ताई बोलते हैं यू नो वो दोबारा नहीं कभी
1: लेकिन
0: नहीं,
1: जिनका नंबर आप ढूंढ रही थी हाँ, गदी माडगुलकर हाँ, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी
0: हाँ,
1: और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे
0: अच्छा
1: दो आंखें 12 हाथ उन्होंने लिखी थी ओपन जेल कंसेप्ट पर जो फिल्म थी वो तो गदीमा ने ही लिखी थी है ना तो मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं ए मालिक तेरे बंदे हम
0: क्या बात

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे, सात आठ नाटक थे शायद,
1: 10-12
0: बापरे जी।
1: तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक आध नाटक लिखती हूँ। तो एक नाटक मैंने लिखा, पक्षान से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन, मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहाँ बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफी की कविताएं सुनाते हैं। जैसे मोर क्या कहते हैं, जन मजला मनती बोर, एक पहा किती तेरी थोर वगैरह, उसके आगे वो जाता ही नहीं है। फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ, तो मैं कोकिला आकर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है। और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है, लिखता है हर एक के ऊपर, लिखता है मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ, एनीवे तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षान से कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, उनका काव्य इम्पोर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्ट कार्ड आया, फैन मेल, किसका, पुल देशपांडे।
0: अरे वाह वाह वाह,
1: कि सही तुझी श्रुति का ऐकली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश आशीष लीतरा, ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया।

0: कि अरे ये नाटक ये भी बहुत मजे की बात है ये और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए बाल उद्यान के लिए नाटक लिखे शेपटी चाशा पत्ते नगरी पहले था पक्षांचे कवि सम्मेलन के बाद और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से मतलब ससून के स्टॉप से डेक्कन जिमखाना जाती थी बस से तीन नंबर बस अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है 3 नंबर की बस होती थी तो बस पकड़ के मैं जाती थी और ये एक मजे की बात तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूँ हाँ तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है
1: वाह
0: हाँ और तब मैं बस में बैठी और पता नहीं ये पत्ते नगरीत का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है उसमें ईंट और बान चार जो है ना अंग्रेजी नाम बताती हूँ हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल है और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयां शुरू है और जिनका कोई अंत ही नहीं है क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ इधर तेरा उधर तेरा ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है ये लड़ाइयां चलती रहेंगी ऐसा ये कुछ कथानक था और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना ये क्या है कब तक झगड़ते रहोगे वो शांति दूत मतलब जोकर जो 53rd कार्ड होता है जोकर यू नो दैट इन ताश के उसमें तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर हाँ ये शांति दूत बनेगा फला धमका ये वो और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माई स्टॉप वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप और वहां देखा अरे ओह मैं कहाँ पहुंच गई फिर ये किताब भी छपी और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरीत के खेल होते हैं इधर उधर भारत में भारत के बाहर भी और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरीत का और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी सा शाप सड़ो की पड़ो झाली काई गम्मत जादू सा शंख भटक्याचे भविष्य बहुत से ये लिखे उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड मिले बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एक दो को और एक दो को स्टेट अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट तो मैं लिखती गई माउस प्रकाशन ने छापी ये किताबें और अभी भी ये छप रही है अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते रहते हैं कर भी लेते हैं
1: ताश से मुझे याद आया चश्मे बद्दूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहाँ ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा
0: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा
1: वो एक लड़की दिखी
0: हाँ, वो नीचे दिखती है नेहा
1: पत्ते
0: हाँ,
1: से फैसला करते हैं कि जिसके पास रानी आएगी
0: अच्छा
1: वो जाएगा
0: ओ, ये सचमुच मैं भूल गई थी हाँ हाँ ठीक है ये तो करते हैं और वो दो बुस्टंडे बिचारे पहुंच जाते हैं उसके घर
1: बिल्कुल बारी बारी से और फारूक शेख रह जाते हैं चश्मे बद्दूर का जिक्र चूंकि ताश की बात चली तो मैंने ताश से ताश जोड़ दिया और मुझे लगा यहाँ चश्मे बद्दूर का गाना लेके आते हैं हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में जिस दौर की
0: कौन सा गाना सुनाओगे
1: आपकी पसंद
0: चश्मे बद्दूर का क्यों नहीं वो काली घोड़ी द्वार
1: बिल्कुल सुनते काली घोड़ी द्वार खड़ी वाह सुनते

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है। ये घटना बताइए, यहाँ से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था, जो आपको मालूम ही है अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था, हाँ, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता है, एक शो होता था रेडियो वीक का, हाँ, एक शो हुआ फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे अब अगला शो कब है, तो मैं अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया, इतनी मेहनत की, इतना महीना भर तालीम की, हो गया, हाँ हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे, इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में, हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण जोगलेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
0: वो तो पूरा एक अलग किस्सा है।
1: हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना, इसलिए। तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया, लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
0: जी,
1: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको।
0: तो वो अखबार में विज्ञापन देखा।
1: हाँ, तो वो देखा मैंने। तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो। मैंने कहा लेकिन ये चिल्ड्रंस थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो सकता है। तो
0: अच्छा, ऐसे ही कह दिया।
1: तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा

0: कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते मैंने कहा क्यों ऐसा क्यों पार्शियलिटी क्यों तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से और फिर एक दो महीने में शादी करके चली जाती है मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ कहते कैसे कैसे मैंने कहा क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है फिर अच्छा कब मैंने कहा पिछले महीने एक महीने में शादी आपको पति ने जाने दिया मैंने कहा नहीं उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए कहते एक महीने में वो इतना तंग आ चुके आपसे वगैरह वगैरह बातें होगी एनी वे तो आई ज्वाइंड NSD and that's how I joined for the first year it was not a very exciting year kyunki kuch khas hua hi nahi udhar aur mujhe phir lagta raha ki are khamkha humne chhod diya children's theater aur yahan pahunch gayi yahan to kuch ho nahi raha lekin agle saal jo ek tufaan aa gaya padhara NSD mein aur wo tha Ibrahim Alkazi
1: क्या बात है
0: तो वो आ गया और फिर सारा माहौल बदल गया पूरा ढांचा ही बदल गया और इतना फिर हमने काम किया इतना सीखा मतलब साथ जिंदगी में पूरा पड़ेगा इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से इट वाज फैंटास्टिक ही वाज अ फैंटास्टिक टीचर बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं इट वाज रियली वंडरफुल
1: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम इब्राहिम अलकाजी था उन्होंने मेरा ख्याल है सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था
0: नहीं आषाढ़ का एक दिन
1: का मंचन किया था जी बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद
0: मौका क्या वो तो था ही काम करना तो था ही तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगु मंजरी का रोल किया
1: पत्नी जो होती
0: हाँ कालिदास की पत्नी
1: जी
0: रानी है वो और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ बहुत ही मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं और वो मुझे मजा भी नहीं था और मैं मोटी भी अभी भी मोटी हूँ लेकिन तब मैं कुछ ज्यादा ही मोटी थी हाँ तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही तुम्हें अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले ये तुम बिल्कुल समझ लो तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल मुझे बिल्कुल नहीं मुझे नाटक करना है निर्देशन करना है आई वांट टू डायरेक्ट आई वांट टू राइट तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया हाँ करा उनके आगे अब थोड़ी उनसे बहस करती तो वो था उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ हाँ यस ऑफकोर्स मैंने एंटिगनी में इज्मनी का रोल किया हाँ मतलब एंटिगनी थी सुधा शर्मा क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी
1: यानी जो आगे चलकर सुधा शिवपुरी बन
0: जी बिल्कुल बिल्कुल तो वो मेरे क्लास में थी सुधा भी और शिवपुरी भी दोनों मेरे क्लास में थे और तब भी दोनों का रोमांस था खैर वो बात और है लेकिन उनकी शादी हुई दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी शी वाज रियली फर्स्ट क्लास और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं घर के बाहर जो होता है ना बरामदा सा उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका तो उसकी गोद में ये अपने आप को से लुढ़क जाती है उसकी गोद में और कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ और ओह रोंगटे खड़े हो गए क्या उसका वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है इतना बढ़िया उसने किया और कालिदास बने थे शिवपुरी और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी वो ऐसे गर्दन हिलाता था उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया 3 महीने के अंदर फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दन हमें बड़ा अचरज हुआ क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं सवाल ही नहीं है कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो एनीवे तो ये एक साल में बहुत सीखा अलकाजी साहब से और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए मतलब टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे मतलब देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे इतना बढ़िया उन्होंने मतलब पूरा यही बदल दिया दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी राजधानी की वी पूरी बदल दी अलकाजी साहब ने और बहुत ही कमाल का कार्य रहा कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति
1: जी तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों के।

0: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: ಈಗ ಕೇಳೋಣ ಹಾಡು

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रोताओं का स्वागत है आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन श्रीमती बालामणि ईश्वर कर्नाटक संगीतज्ञ मुसरी सुब्रमण्य अय्यर के परिवार से जुड़ी हुई हैं आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता श्रीमती सुशीला रामस्वामी से प्राप्त की आगे आपने त्रिशूर के श्री राम वर्मा संगीत विद्यालय से उच्च प्रशिक्षण ग्रहण किया आप 1992 से आकाशवाणी मदुरई में संगीत कलाकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं संगीत यात्रा के अनेक पड़ावों को पार करते हुए आज आप ए ग्रेड की कलाकार हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर ने संगीतज्ञ त्रिची श्री एस गणेशन से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा अपनी कला की तकनीक एवं कौशल का गहन ज्ञान प्राप्त किया आपने तमिलनाडु और केरल में अनेक संगीत सभाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं तथा संगीत प्रेमियों की अपार प्रशंसा प्राप्त की है श्रीमती बालामणि ईश्वर त्रिची एस गणेशन की कर्नाटक संगीत शैली में राग आलापना के लिए सुप्रसिद्ध हैं। पिछले 3 दशकों से सक्रिय रूप से गायन प्रस्तुत करती आ रही श्रीमती बालामणि ईश्वर अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं।
1: नमस्कार दिस इज आकाशवाणी वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा इन टुनाइट्स प्रोग्राम यू कैन लिसन टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर श्रीमती बालामणि ईश्वर hails from the lineage of renowned vocalist Musiri Subramanya Iyer. Initially, she learnt music from her mother, Srimati Sushila Ramaswamy. Further tutelage was from renowned musician Tiruchi Sri S. Ganesan. After completing Music Senior Certificate course from Thrissur Sri Rama Verma Music School, Srimati Balamani joined Akashwani Madurai in the year 1992. Acclaimed for her Raga Alapana style rendition, she has travelled extensively for performances. Srimati Balamani Ishwar is an A-grade artist of Akashwani and is the recipient of several awards and accolades.
0: Aaj ke karyakram mein, Srimati Balamani Ishwar ke saath sangat kar rahe hain. Violin par Srimati Parur M.K. Anant Lakshmi, Mridangam par Sri B. Ganapati Raman, tata Kanjira par श्री उडुपी एस श्रीकांत श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का शुभारंभ संत त्यागराज की रचना ब्रोव बारमा से कर रही हैं राग बहुदारी पर आधारित ये रचना आदिताल में निबद्ध है
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट श्रीमती बालामणि ईश्वर इज अकंपनीड बाय श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड Udupi Sri S. Srikant on the Kanjira. The concert begins with Brova Barama, composed by Saint Tyagaraja, in Rag Bahudari, set to Adi Tal.

0: अब आप सुनेंगे मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना शेषाचल नायकम वराली राग और रूपक ताल में.
1: लिसन नाउ टू शेषाचल नायकम कंपोज्ड बाय मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन राग वराली सेट टू ताल रूपकम.

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का गायन. आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत. लीजिए अब प्रस्तुत है करहर प्रिया राग और मिश्र चापताल में संत त्यागराज की रचना पक्कल निलपड़ी.
1: In the Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, you are listening to a vocal recital by Srimati Balamani Ishwar. She is accompanied by Parur Srimati M.K. Anantalakshmi on the violin, Shri B. Ganapati Raman on the mridangam, and Udupi Shri S. Srikant on the kanjira. Listen now to Pakkala Nilapati, composed by Saint Yagaraj.

0: रचना के अंत में आपने सुना तनी आवर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रस्तुत कर रही है रचना मनदिर कुहंदद, सिंधु भैरवी राग और आदि ताल में। रचना है तंजावूर शंकर अय्यर की।
1: That was a tani avartanam performed by Shri B. Ganapati Raman on the Mrudangam and Udupi Shri S. Srikant on the Kanjira. Srimati Balamani Ishwar concludes the concert with Manadir Kugandad, composed by Tanjavur Shankara Iyer in Rag Sindhu Bhairavi, set to Tal Adi.

रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज आप सुन रहे थे श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजिरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। एक कार्यक्रम आकाशवाणी के मदुरई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। इन द रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा यू जस्ट हर्ड वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी वॉज अकॉम्पनीड बाय परूर श्री एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। Recorded in the studios of Akashavani Madurai,